हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डूंगर खां भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
5: 12 arab rupya rakhya gaya, 1 arab Sindh hukumat ada kandi, 11 arab rupya World Bank ka milna hai sehat laye, 17 arab 43 crore hai taleemi shobe laye, 25 arab 86 crore rupya rakhya gaya.
6: सिंध जी बजट में आपाशी खाते लाइ 30 अरब 80 करोड़, वर्क्स एंड सर्विस खाते लाइ 31 अरब 59 करोड़, एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाइ 40 अरब 86 करोड़ रुपया मुख्तस किया वया। एनपीएस एंड सिंध जी एमएनएस जरिए मंसूबा देने बारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेगा रिथा लाइ 29 अरब रुपया मुख्तस।
5: कराची के 25 वडन मंसूबन लाए 14 अरब 11 करोड़ रुपया खसूसी तौर से रखा वह। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 1 तहत 1300 नयू सीसीटीवी कैमराओं लगाने लाए 90 करोड़ रुपया मुख्तस। लाड़काण में 600 बिस्तर के अस्पताल की अडावत लाए 5 अरब रुपया रखने की तजवीज़। 295 स्कूल्स के अपग्रेड करने लाए 9 अरब रुपया रखा वह।

0: सिंध के नए माली साल के बजट में कचे वारन इलाकन में बुनियादी सहूलतों देने ला 1 अरब रुपया रखा वाया। रजाकाबाद वेझो नेशनल हाईवे से एक खास मेडिकल कॉम्प्लेक्स कायम करने ला 70 करोड़ रुपया रखने की तजवीज। मटियारी सांगड़ और चंडो अलायार जिलन में पानी की कुदरती जोर की बहाली ला 1 अरब रुपया रखा वाया।
1: सिंध जो वड़ो वजीर सैयद मुराद अली शाह नाणे वाले वजीर की हैसियत में अज सिंध असेंबली में सिंध बजट पेश कंदो। बजट की मंजूरी लाए सिंध काबीना जो खुसूसी इजलास में तलब किया वो। एमक्यूएम बजट इजलास दौरान सख्त एहतजाज फैसलो कर वरतो। सिंध असेंबली के इजलास दौरान सिक्योरिटी का इंतजाम भी सख्त किया वा।
0: वफाकी हुकूमत बजट से पीपल्स पार्टी जहा खदशा खत्म करने लाइ कोशिशों तेज कर छू। नायब वजीर आजम इसहाक डार की मुमलकती वजीर बिलाल अजहर कियानी से गड बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। बजट से समूरा खदशा खत्म करने की कोशिश। बिलावल भुट्टो जरदारी है तो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी ठाई। नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात में बजट वार मामलों से गाल्ह बोल थी। गाल्हि सिलसिलो जारी रहा।

0: ईरान सां मुआदो कामयाब थियणु घुर्जे। ईरान रुकावटो हाणे इब्राहिमी मुआदे ते घुराइ लाइ राह हमवार थी वई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो फ्रांस में G7 इजलास दौरान कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी ऐं UAE जे सदर शेख ज़ायद अल नहान सां दारदार मुलाकात दौरान ॻाल्हि। संदसि चवणो हो त अमरीका न हुजे हा त इसराइल जो वजूद ई न हुजे हा। तहरान एटमी हथियार खणण जी कोशिश बर्बाद। आमना हुर्मुज जुमे ॾींहुं खुली वेंदो। को बि टूल टैक्स न हूंदो। ईरान सां ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो आसान हूंदो। रिजीम चेंज सां फ़ाइदो नाहे थींदो। ईरानी क़यादत माक़ूल आहे। लिबनान जंग मामूली तकरार आहे। इसराइल खे लिबनान में ज़िमेवारी जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। ईरान सां थियल मुआदे जो मुख्य ऐं अहम नुक़्तो उहो ई आहे त ईरान कंहिं बि सूरत में एटमी हथियार न ठाहींदो। लिबनान ते इसराइली कब्ज़ो जारी रहियो त अमरीका सां थियल मुआदो ख़तरे में पइजी सघे थो। लिबनान ते इसराइली हमिलो या कब्ज़े मुआदे जी भञकड़ी हूंदो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो नओं दौर जुमे खां स्विट्ज़रलैंड में शुरू थींदो। मुआदे खे हतमी शिकस्त ॾियण लाइ सालसी टीमूं ईंदड़ हफ़्ते इजलास कंदियूं। शुरूआती मुआदे ते बाज़ाबता तौर ते अमल जी शुरूआत जुमे खां थींदी।
1: अमरीका ईरान मुआदे जी तफ़सीलनि लाइ पहुच लाइ इसराइली दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। इसराइली मीडिया जो चवणु आहे त ईरान सां मफ़ामती याददाश्त नामे ते पहुच लाइ इसराइल अमरीका खे बाज़ाबता तौर दरख़्वास्त कई हुई। अमरीका मुआदो ॾेखारण खां इनकार करे छॾियो।
0: अमरीका ईरान मुफ़ामती यादाश ते सही वारो हंधु तब्दील। स्विट्ज़रलैंड जे परॾेही वज़ीर चयो आहे त हाणे तकरीब जिनेवा बदिरां वर्जिन स्टॉक में 19 जून ते थींदी। सिक्योरिटी ज़रियन चयो आहे त ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जी कामयाबी पाकिस्तान जी कामयाबी आहे। कुझ कुवतनि UAE सां लाॻापा ख़राब करण जी कोशिश कई पर नाकाम रहिया। पाकिस्तान ॻाल्हियुनि वारे समूरे अमल में ट्रैकर जो किरदार अदा कयो। पाकिस्तान जी कोशिश आहे त विचोबर में अमन क़ाइम थिए। ॻाल्हियुनि दौरान मुंहिंजनि खे रुगो वियो। अब्बास अराग़ची पारां भारत जे दौरे जो पाकिस्तान ते असर नथो पवे। ॻाल्हियुनि जे नुक़्तनि खे गुझो रखणु कामयाबी जे लाइ ज़रूरी हो। ॻाल्हियुनि दौरान राब्ते वारो अमल वज़ीर आज़म जे ज़रिए थी रहियो हो। समूरे अमल जी कामयाबी जो क्रेडिट समूरे मुस्लिम क़यादत ॾांहुं वञे थो।

0: सजागर वेझो बुढो टालपुर में पुराने तकरार था जत बरादरी के बिंदुरन में जेड़ो फायरिंग में पीपी अगवान कतल जेड़े दौरान गोलियों लगने सब पीपी कल्चर विंग हैदराबाद डिवीजन जो जनरल सेक्रेटरी रबर डेनो जत कतल थी वो वाके बाद इलाके में शिकतान वाली सूरत हाल पुलिस पिकेट कायम करे वरती है।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: रोड दुबई कार वॉश लाड़काणो राबते जिलाए शकील अहमद मोरियो मोबाइल नंबर 03003436498 03131342649
1: खुशखबरी लाड़काणे जो मशहूर मेडिकल जी दुनिया जो वडो नालो प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद जमाल।

ॾुखियो ॾिसो न ॾींहुं, सुखिया हुजो सदाई ॾुखियो ॾिसो न ॾींहुं, रहमत वसेव रब जी जीअं सावण वसे मींहुं, सजण रातो ॾींहुं हुजो अलाह जी अमान में। अस्सलामु अलैकुम सभिनि, GFM 88.8 लाड़कण जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम रोशन सुबुह साण करे अवां जो पंहिंजो मेज़बान नेमत अलाह जूणे जो अवां जी ख़िदमत में हाज़िर ऐं क़बूल प्रवेश हिकु भरियो सलाम। जी समाइन, कहिड़ा रहण वञा, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चाक चङा भला। असांजी हर पल हमेशह अवां प्यारनि सॼणनि लाइ इहा ई दुआ हूंदी आहे त जिते बि जो ख़ुशि हुजो, कॾहिं ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो, ऐं सदाई गुलाब जे गुलनि जीअं खिलंदा मुस्कराईंदा रहो। आमीन। साईं, मुंहिंजा हर सुबुह जो आगाज़ ज़िंदगीअ खे वक़्त जे नए सिर ऐं नए मुण ॾांहुं वठी वञे थो, जिते हारी नारी मज़दूर पोरियत सरकारी मुलाज़िम पंहिंजे रिज़्क लाल लाइ जाखोड़े रहियो आहे, जिते इल्म जी ॻोल्हा में ताज़ा ज़हन तालिब इल्म तालीमी इदारनि दरसगाहनि ॾांहुं वञनि पिया। इंसान त ठहियो पर जानवर जीत पखी पुखण बि रब पाक जी साराह कंदे जाॻी पवनि था ऐं पंहिंजे मुख़्तलिफ़ मिठड़ियुनि मिठड़ियुनि ॿोलियुनि में अलाहो अलाहो कनि था, ऐं हर को तरक़ीअ जे राहनि खे

हमवार करण लाइ हथ में हथ मिलाए अॻिते वधण जी जुस्तजू में आहे, पर सिज जो उभरण काहिलनि लाइ सुस्तनि लाइ अलाए छो बेमाना हूंदो आहे ऐं सुस्ती मथनि ॻाल्हि बि हूंदी आहे। मशहूर चवणी आहे त मौला वसाए मींहं त कायरा छुटनि कम खां। सो साईं जा सुस्त ऐं कम चोर माण्हू कॾहिं बि कामयाब नथा थी सघनि। बुख त उहे बि सुस्त माण्हू कॾहिं बि कोन मरंदा आहिनि ऐं कॾहिं बुख ते कोन था सुम्हनि, पर मुआशिरे में उन्हनि माण्हुनि खे सुठी नज़रुनि सां कोन थो ॾिठो वञे। जॾहिं त मेहनती माण्हूअ जी हर हंधि इज़त हूंदी आहे, छो त अलाह साईं पंहिंजे कलाम पाक में पौरत खे पंहिंजो दोस्त सॾियो आहे।

जी साईं मुंहिंजा काइनात जी सुंदरता मथां निगाह फिराइबी त सूंहं जा केतिरा ई रंग झरकंदे नज़र ईंदा। समूरी महकंदड़ माहौल में तख़लीक जो हर रंग ख़ालिक अकबर जी अज़मत जी वाखाण जा गीत ॻाईंदो नज़र ईंदो आहे। ऐं जेको बानो पंहिंजे ख़ालिक सां मुहबत करे थो, छो त हू ॼाणे थो त मख़लूक सां मुहबत करण सां ख़ुदि ख़ालिक ख़ुशि थींदो आहे। बानो जेकॾहिं दिल मां दगा ऐं कूड़ खे कढी छॾे थो, यकीन कयो उहो बानो मालिक हक़ीक़त जे वेझो थी वञे थो। आजिज़ी इनकसारी हुन जे रूह जी ग़िज़ा बणिजी वञे थी, ऐं उहो ई बानो अना ऐं खुदीअ जो दुश्मन थी पवे थो। ऐं पोए दुनिया जूं रुहानी ख़ुशियूं, ख़ूबसूरतियूं ऐं हुस्नाकियूं दिल दिमाग़ जी ख़ुराक बणिजी पवनि थियूं।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

साईं जा ॻाल्हि कंदासीं हिन वक़्तु असां बिजलीअ जी, त बिजली पंहिंजो ज़मीन जी हुजे या आसमानी हुजे, ॿिन्ही मां फ़ाइदो बि आहे त नुक़सान बि आहे। ऐं आसमानी बिजली जंहिंखे असां खिवण बि चऊं त असां हुन खे विझ बि सॾींदा आहियूं, ऐं साईं मुंहिंजा विझ जेकॾहिं धरतीअ ते किरे त काफ़ी जानी ऐं माली नुक़सान बि थी पवंदो आहे। ऐं इहो वरी फ़ाइदो हूंदो आहे ख़ासि करे लोहरनि खे, जेके पंहिंजो हुनखे वॾी कमी ईंदी आहे या बिजली विझ कमी ईंदी आहे, जेको हारी ऐं पोरत खे ॾाटनि कुहाड़नि ठपरण वेल विझ जो पाणी चवंदा आहिनि असां ॾींदा आहियूं, ऐं उहे तिखा औज़ार करे ॾींदा आहिनि ख़ासि करे अहिड़ा लोहर। अहिड़ी रीति धरतीअ वारी बिजली मां बि नुक़सान बि आहिनि त फ़ाइदा बि आहिनि। जेकॾहिं बिजली मौजूदु आहे त वॾा वॾा कारखाना, फैक्ट्रियूं ऐं मिलियूं वग़ैरह हलनि थियूं, ऐं जिन मां असांजे इस्तेमाल वारियूं शयूं ठहनि थियूं ऐं असांजे रोज़गार जो ज़रियो बि बणजनि थियूं। ऐं घरनि में एसी हुजे, फ्रिज हुजे या ॿियो घणो कुझु बिजली ते हलाए असां पाण सभु फ़ाइदो हासिलु कंदा आहियूं, पर अॼुकल्ह बिजली नुक़सानकार बि बणिजी चुकी आहे। हिकु त बिजली आहे कोन, जेकॾहिं आहे त 24 कलाकनि में चंद कलाक बिजली हले पई, सा बि अखु बूट वारी। ऐं बिजली जा जॾहिं वरी बिल अचनि था त पाण खे ॻणती ॻारे छॾे थी त एॾा वॾा बिल ऐं बिजली अॼु हले कोन थी। त उन जे लाइ कोशिशि कयो त बिजली जी बचति कयो ऐं बिजली थोरी हलायो त पाण खे फ़ाइदो आहे ऐं पंहिंजे बिजली जो बचति जो फ़ाइदो बि आहे पंहिंजे लाइ, पंहिंजे क़ौम जे लाइ।

साईं मुंहिंजा ज़िंदगी जो मक़सदु इंसान जी ज़िंदगी में लाज़िम मलज़ूम आहे, मगर मक़सदु रखणु ऐं उन खे हासिलु करणु तमामु वॾी कामयाबी आहे। मक़सदु लफ़्ज़ खे अगरि शरई या मज़हबी नुक़्ते नज़र खां ॾिसजे त उन लाइ नेकी या नेक अमल लफ़्ज़ तमामु थोरो आहे। इंसान जी ज़िंदगी में

साईं मुंहिंजा ॻाल्हि कंदासीं हुस्न इख़लाक जी, त इंसान जी आजिज़ी ऐं निकसारी खेसि अज़ीम बणाए थी। असां जेतिरो बि पाण खे ओतिरो ई हुस्न इख़लाक में बुलंद रहंदासीं। तकबर, हठ, वॾाई ऐं गुरूर त सावण में जीअं मजोस दिल जे आईने ते पवंदी आहे, त दिल ते हिकु बदनमा दाग थी पवंदो आहे, जंहिं सां इंसान जी इंसानियत मरी वेंदी आहे। आकड़ ऐं वॾाई सां कंहिं जी बि इज़त ऐं शान शौकत में बुलंदी नाहे ईंदी, ऐं असां जेतिरो बि न्याज़ ऐं वक़्त जो सच असां खे बुलंद बणाईंदो ऐं गैर बि असां जी वेंदा ऐं असांजो ख़्यालु कंदा, छो त ही पंहिंजी ऐं ख़ासि करे इंसान गुरूर खां, उन तकबुर खां, वॾाई खां पासो करे जेको अल्ला ताला खे पसंदि नाहे।

ड्राइवर हलाइनि पिया त हुन में अक्सर नंढा ॿार हूंदा आहिनि। जेकॾहिं वॾा माण्हू हलाईंदा आहिनि गाॾियूं त हुनखे वरी ट्रैफिक जे कानून क़ाइदनि जी काई बि ॼाण न हूंदी। ऐं भर पासे मां प्यादल हलंदड़ या गुज़रंदड़ मोटरसाइकिल वेंदड़नि खे रक्षा जो टकर जेकॾहिं हणंदा त उन्हनि खे ज़ख़्मी कयूं हलिया वेंदा ऐं उन खे उनजी परवाह बि न हूंदी आहे। ऐं पासे में साइड में ॾिसंदा ई न आहिनि त को किरी पियो या पाणी मां क्रॉस कंदा आहिनि त कंहिंजा कपिड़ा ख़राब थी विया, कंहिंखे निमाज़ कपिड़ा हूंदा आहिनि, को ऑफिस वञणो हूंदो आहे, बहरहाल कंहिंखे का परवाह न हूंदी। त साईं मुंहिंजा असां पंहिंजो ॻाल्हि कयूं पिया त के वरी ज़ख़्मी थी वेंदा आहिनि, अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा ई आहे त हुनखे कीअं ॻोल्हिजे। वरी जेकॾहिं ॻोल्हण जी ॻाल्हि कंदासीं त उन्हनि चिंची रक्षण ते का बि नंबर प्लेट न हूंदी ऐं हुन ते ख़ासि करे ख़ास जुमिला लिखियल हूंदा आहिनि, मज़ाया कंहिं ते कीअं। बहरहाल उन जे तरफ़ शहरी इंतिज़ामिया ऐं ट्रैफिक इंतिज़ामिया खे तवजो ॾियणो खपे ऐं हुन जी सख़्त ज़रूरत आहे। ऐं कोशिश असांजी गवर्नमेंट करे ऐं असां सभु पाण चवंदा आहियूं त हिकु हथ जी ताड़ी न ई वॼंदी, पर असां इहा कोशिश कयूं त नंढा ॿार जेके 18 साल उमिरि खां घटि आहिनि उन्हनि खे असां इहा सवारी हलाइण न ॾियूं। ख़ासि करे मोटरसाइकिल आहे, रक्षो आहे ऐं चिंची रक्षो आहे, इहो हुन खे हलाइण न ॾियूं। जेकॾहिं वॾी उमिरि वारा हलाइनि था हुनखे ड्राइविंग लाइसेंस हुजे ऐं ड्राइविंग जे उसूलनि क़ाइदनि कानून जी ख़बर हूंदी त को एक्सीडेंट न थींदो, कंहिंखे नुक़सान न पहुचाईंदा। त अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते अमल थियणो खपे ऐं पंहिंजे ॿारनि जो ख़ासि ख़्यालु करणु खपे, हुनखे अहिड़ियूं गाॾियूं न ॾियणु खपनि। ऐं असां अक्सर रक्षा चिंची हलाइण वारा अहिड़ा ॿार आहिनि जंहिंजा पेर बि हुते न आहिनि पुॼंदा, त ख़ुदा रा पंहिंजो पंहिंजे ॿारनि जो पंहिंजे अवाम जो ख़ासि ख़्यालु रखो त जंहिंसां वधीक नुक़सान खां पाण बची सघूं।

साईं मुंहिंजा दुनिया उमेद न आहे आरज़ुनि जी न पर हक़ीक़त जी जाइ आहे। दुनिया में मरण जो ख़ौफ़ ऐं रिज़्क जो ग़म न कजे, छो जो उहे कंहिं बि हालतुनि में पंहिंजे वक़्त ते असां वटि ज़रूरु पहुची वेंदा। छो जो हीउ दुनिया दरिया आहे ऐं आख़िरत हुन जो किनारो आहे। दरिया में तरंदड़ ॿेड़ी तकवा आहे त उन ॿेड़ी में सवार माण्हू मुसाफ़िर आहे। जॾहिं दुनिया कंहिं ॾांहुं मुतवजो थींदी आहे त पोइ ॿियनि जूं चङायूं बि उन जे खाते में शामिल करे छॾींदी आहे ऐं खां मुंहुं मोड़ींदी आहे त पोइ संदसि ख़ूबियूं बि खसे वठंदी आहे। बेशक हीउ दुनिया हक़ीक़तनि जी जाइ आहे।

साईं मुंहिंजा कंहिं बि निज़ाम खे सवारण ऐं बिगाड़ण में असांजो ई किथे न किथे हथ ॿधलु हूंदो आहे। असां मां हर हिकु माण्हू पाण मथां कूड़ बदयानती कढी छॾे त यकीन कयो दयानतदारी ऐं सचाई पंहिंजो पाण ई पैदा थी पवंदी। असां चाहियूं त धोके जी दीवार खे डाहे विझूं ऐं मोहबतनि जा मीनार ऊचा करे छॾियूं। निज़ाम असां पाण जोड़ींदा आहियूं ऐं टोड़ींदा बि पाण आहियूं। असां पंहिंजा तालुकात वधाईंदा बि आहियूं त वरी घटाईंदा बि आहियूं। मुल्कनि जा मोती खिंदेरे मुल्की निज़ाम महकाए छॾण बि असां माहिर आहियूं। उन शइ जा प्यार मोहबत करण जा बि असां माहिर आहियूं, पर थी सघे थो असां निज़ाम खे सवारियूं ऐं बिगाड़ियूं न।

जी हा, सभिनि प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा ऐं आख़िरी लम्हनि में प्रोग्राम रोशन सुबुह मां अव्हां खां मोकिलियूं पिया। पंहिंजी मेज़बान नेमतुल्लाह जूणी खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगाहबान।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 11 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: में 10 सैकड़ों रिटायर्ड मुलाजमन की पेंशन में 7 सैकड़ों वाध की तजवीज। तरक्याती बजट में वही कटौती। तरक्याती बजट 1018 अरब रुपये का घटाए 720 अरब रुपया मुख्तस करने की तजवीज। निज सूबाई तरक्याती बजट में 520 अरब। घटाए 15 अरब रूपया मुख्तस करण की तजवीज। वही बोझ मुतासर करण की तामीर वाले प्रोग्राम रहे 97 अरब रूपया मुख्तस गुडू बिराज जहा 11 ए सखर बिराज जहा 12 गेट तब्दील करण लाय 12 अरब रूपया रखा व्या। 1 अरब सिंध हुकूमत अदा कन्दी। 11 अरब रूपया वर्ल्ड बैंक

31 अरब 59 करोड़ ए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते ला 40 करोड़ 86 करोड़ रुपया मुख्तस किया वा एमपीएज सिंध के एमएनए जरिए मनसूबा देने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जा मेगा रेथा 29 अरब रखा गया। कराची के 25 वडन मनसूबन लाय 14 अरब 11 करोड़ रुपया खसूसी तौर रखा वा कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज वन तहत 1300 नयू सीसीटीवी कैमराऊ लगाने लाय 90 करोड़ रुपया मुख्तस लाड़काने में 600 बिस्तर के अस्पताल की दावत लाय 5 अरब रखा रखने की तजवीज 295 स्कूल्स के अपग्रेड करने लाय 9 अरब रखा वा। सिंध नए माली साल की बजट में कच्छे वारे इलाक में बुनियादी सहूलतू देने लाय करब रखा वा रजाकाबाद वेझो नेशनल हाईवे के एक खास मेडिकल कॉम्पलेक्स कायम करने लाय 70 करोड़ रुपया रखने की तजवीज मटियारी सांगड़ ए टंडोल

मीडिया जो चवण है ईरान से मफामत यादाश नामे ते पहुंच ला इसराइल अमरीका के बाजाबता तौर से दरख्वास्त कई हुई अमरीका मुआदो डेखारण का इनकार कर छोड़।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6। अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

ईज और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज जी रुखसार सिंध की आवाज। वही कैसे ही आप आई होप कि जी जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल टिपरा सर्क्यूल एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो भी आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम आपको और मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी है सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं, वक्त हुआ जाता है जी 11:21 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है, तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है। वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी बट अलर द नेवर। अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। खुदा खैरियत मौजूदा और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलूब।

लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ अलग कुछ डिफरेंट कुछ हटके कर रहे हैं, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि अपने हर काम में कामयाब होते रहें हमेशा हमेशा. आमीन.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन डॉट एवोकाडो की भरपूर खूबियां जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बेजान पन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन

0: याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्ट।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: ओके जी, एक और कॉलर लेते हैं, चेक करते हैं कॉलर कहाँ से, चेक करते हैं। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: आपसे सवाल बात कर रहा हूँ।
0: आपसे सवाल भाई, जल्दी से कौन सा कलाम सुनाएंगे?
1: मैं कैसे
0: सुना दें प्लीज। आवाज नहीं आ रही आपकी, सॉरी।
1: हेलो
0: जी, जी आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी।
1: अभी
0: मुझे आप बस नाम बता दें कसीदे का, क्योंकि आप जो सुना रहे हैं मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई।
1: मुखे तेरी नाए परवा मुझे अमर कलंदर।
0: ओके जी, ठीक है। और कुछ कहेंगे?
1: रात पत्थर की आवाज में है। मेरे दोस्त है हॉस्पिटल ढेलो, मेरे ढेलो के दोस्त है।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।

0: ये FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 12 PM. This time check is brought to you by
3: Bankal Habib, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर
5: अरब रुपया मुख्तस कराची के 25 वडन मंसूबन लाए 14 अरब 11 करोड़ रखा पा। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज वन तहत 1300 नयू सीसीटीवी कैमरा लाए 90 करोड़ रुपया मुख्तस। लाड़काने में बिस्तर की अदावत लाए 5 अरब रुपया रखने की तजवीज। 295 स्कूल्स के अपग्रेड करने लाए 9 अरब रुपया रखा पा। एनएफसी को सिफियो ना है जो को तब्दील न थी सके शयू तब्दील थी न्यू रहंदी आन। वफाकी वजीर राना तनवीर कौमी असेंबली में बजट ते तकरीर कंदे चो तो बजट अवाम दोस्त है अपोजिशन बिना जवाब तनकीद कर रही है। राना तनवीर की तकरीर दौरान पीटीआई ए लीगी एमएनएस में सख्त जुमलन की डेवट भी थी। मुल्की मैशत के संभालियो मुखालिब बजट की वाखाण कन पाया। सुध समय वाले वफाकी वजीर अता तारड़ ए ममलकती वजीर बिलाल अजरकियानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। अता तारड़ चो तो पीटीआई मुल्की मैशत जो बेड़ो बोड़ो नून लीग तारियो है। बिलाल अजरकियानी पारा बजट पगारदार तबके लिए रिलीफ करार। कोरबा भरसा औरत कारें इल्जाम हेठ कुहाड़ी हणी कतल बजना जख्मी। पुलिस चवण है तो गोट भर खासकली में जवाबदार हुसैन खासकली आमना खासकली के कुहाड़ी हणी कतल कयो। पुलिस लाश जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कयो। जवाबदार गिरफ्तार कुहाड़ी भी हथ। कंदकोट में बिजली की लोडशेडिंग खिलाफ शहर जो एहतजाज। सियासी समाजी मजहबी जमायतन सिविल सोसायटी पारा सेपको इंतजामिया खिलाफ एहतजाज किया वो। मुजाहरीन चो तो सेपको इंतजामिया की गफलत सबब शहर में बिजली जो संगीन बहरान है। सख्त गर्मी में बिजली की बंदी जो सिलसिलो खत्म किया वे। उड़ेरलाल के घोट अल्लाबख्श मीर जज रवासन जो बुनियादी सहूलत की खोट खिलाफ एहतजाज। चूंडियल नुमाइंदन खिलाफ नारेबाजी। घोट के बुनियादी सहूलतूं दियण गोठणनि नुमाइंदा वोट वठण बाद गुम आहिनि। केर बि गोठ जा मसला हल करण लाइ तयार नाहे। मसला हल कया वञनि। बटियारी भरिसां नारी मुबैना तौर ते अगवा। वालिद जो वकार चंड नाले नौजवान ते धीअ खे अगवा करण जो इल्ज़ाम। पुलिस वटि रिपोर्ट बि दाख़िल कराए छॾी। मेहड़ मां 8 महीना अॻु मुबैना तौर ते अगवा थियल शागिर्द याणी खालदा सुमरो जो बि हाईकोर्ट जे हुकम ते केस दाख़िल। शाहिद जोगरो अब्दुल अज़ीज़ उर्फ अज़ीज़ उमराणी ऐं ॿिन नामालूम जवाबदारनि ते केस दाख़िल। ऐं ट्रिब मेयर शाह में जसकम में शहरनि जो बदमनी ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो ऐं धरणो। मुज़ाहिरीन मूजिब शहर ऐं बिर पासे में बदमनी चोट चढ़ियल आहे। पुलिस नाकाम थी वई आहे।
4: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
6: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
0: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो बुधंदा।

0: उसको उसके गांव से उसको ब्रांड कर दें कि उस इलाके की जो पैदावार है, अगर किसी जगह पे गन्ना उगता है तो वहां पे गुड़ के मेले लगाए जाएं। गुड़ मेला हम लोग पिछले 10 साल से गुड़ मेला करते हैं, गुड़ फेस्टिवल्स करते हैं। तो ऐसी चीजें हम करके उस लोकल इकोनॉमी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, जिस तरह आपने गवर्नमेंट की बात की तो हमें आप ये बताइएगा कि हुकूमत और निजी शुबे इस मैदान में किस तरह तावुन कर सकते हैं आपके ख्याल में?
0: मेरे हिसाब से देखें, इस वक्त पाकिस्तान में जो ज़राअत का शोबा है वो अपनी मदद आप के तहत ही चल रहा है। अगर सच बोला जाए तो इस वक्त कोई, जैसे मैं इसको ऐसे मिसाल देता हूँ कि अगर आप, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जब आप बीमार होते हैं खुदा ना खास्ता, तो आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके खड़े होते हैं या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं? आप यही कहते हैं कि जी मैं किसी चले प्राइवेट क्लिनिक में जाके, अगर आपके बच्चे या आपके भांजे भतीजे जो भी हैं वो किसी सरकारी स्कूल में जाते हैं या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, आप बेहतर फैसिलिटी चाहते हैं ना, जब आप बेहतर फैसिलिटी पे जाते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट के तमाम शोबों की कमोबेश कोई अच्छी हालत नहीं है। इसी तरह ज़राअत का भी यही हाल है कि ज़राअत के अंदर भी कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो रही पिछले 20-30 सालों में जिसको कि हम काबिले जिक्र कह सकें। तो इसलिए जो ये सारा सेक्टर है ये अमूमी तौर पर लोग अपने तजुर्बात करके ही सीख रहे हैं और अपनी जो एक्सपीरियंसेस सही एक दूसरे को डेटा दे रहे हैं। और आजकल के दौर में मेरी नज़र में जो खासतौर पर टेक्नोलॉजी का ईरा है, आजकल इंटरनेट मौजूद है गांव गांव देहात में, यूट्यूब आपके पास मौजूद है, आपके पास गूगल की है, आपके पास सर्च इंजन मौजूद है। आजकल के दौर में आप किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी मुझे पता नहीं था। आप ढूंढने वाला, अगर हर गांव देहात में आप लोग जो पढ़े लिखे, हर जिम्मेदार के बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, हर गांव के अंदर ऐसे लोग हैं, तो सीखने के लिए अगर हमें सरकार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सरकार का काम यह है कि वो फैसिलिटेट करे, वो पॉलिसी मेकिंग ठीक करे, वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट करे, वो चीजों की प्राइसिंग को कंट्रोल करे और उसके लिए उसकी जो प्रोड्यूस है उसके लिए वैल्यू एडिशन का इंतजाम करे। मिसाल के तौर पे आजकल टंडोवाला यार में टमाटर बहुत उगता है, ऐसी तरह ही बहुत से इलाकों में टमाटर उगता है, तो जब टमाटर की फसल जब उसका रेट जब गिरता है तो इतनी ज्यादा नीचे गिर जाता है कि वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसको वो दरिया में फेंकने के काबिल होती है। उसकी अगर उस वक्त वैल्यू एडिशन कर ली जाए, इसी तरह जब अभी आजकल तरबूज का सीजन पीछे गुजरा है या जो भी फ्रूट जो भी होते हैं जब अबेंडेंस में होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वैल्यू एडिशन अगर ना हो, उसकी प्रोसेसिंग ना हो, उसके पल्प बनाने, उसके जूसेस बनाने, उसको ड्राई करने, उसकी बाद में वैल्यू एडिशन करने का अगर प्रोसेस ना हो, तो अगर वो चीजें अगर कर ली जाएं, और फिर जैसे किसी जगह होती है कि एक्सपोर्ट के ऊपर चीजों पर फार्मर फ्रेंडली हमें इनिशिएटिव करने चाहिए। गवर्नमेंट का सिर्फ ये काम है कि अगर गवर्नमेंट फार्मर को फैसिलिटेट करे और उसके लिए मिनिमम बेंचमार्क करे, ना कि वो ब्लैकमेल हो जाएं किसी ऐसे लोगों के या ऐसे माफिया के हाथों के, कल को वो परेशान होते हैं। क्योंकि इस वक्त आज के मुल्क, आज की डेट में अगर हमारा मुल्क किसी वजह से सर्वाइव कर रहा है इतनी महंगाई और सब चीजों के बावजूद, तो वो सिर्फ उसमें एक जो बुनियादी रीजन है वो इम्पोर्ट, आज हमें दूध भी इम्पोर्ट करना पड़े, आज हमें चारा भी इम्पोर्ट करना पड़े, आज हमें ये सारी चीजें जो इस वक्त हमें बहुत मुनासिब कीमत में अवेलेबल हैं, जो कि हम किसान को उसका गला घोट के ये कर रहे हैं। तो अगर हम ये ना हो तो हमारी हालत देखें कहां पे हो, क्योंकि हमें तो किसान की साल में, देखें आपको इंजीनियर की साल में एक दफा जरूरत पड़ेगी, आपको डॉक्टर की हो सकता है साल में 10 दफा जरूरत पड़े, आपको एक वकील की हो सकता है साल में या 2 साल में एक दफा जरूरत पड़े, लेकिन आपको एक फार्मर की, एक किसान की दिन में 10 दफा जरूरत पड़ती है। आप दूध चाय पीते हैं, आपको फार्मर का, आपको दूध भी चाहिए, आपको पत्ती भी चाहिए, आपको चीनी चाहिए, फार्मर उगाता है। आप खाना खाते हैं, आप पराठा खाते हैं, आप अंडा खाते हैं, फार्मर उगाता है। आप दिन को कोई गोश्त खाते हैं, सब्जी खाते हैं, जो भी चीजें हम दिन में जो भी चीजें कंज्यूम करते हैं वो किसान के खेत से आती हैं। तो अगर हमने किसान को फैसिलिटेट करना है तो उसके लिए हमें फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी चाहिए। सब्सिडी से काम नहीं चलेगा, आपको एक लॉन्ग टर्म एक वायबल प्रोसेस बनाना पड़ेगा ताकि जिसमें कि फार्मर को एग्रीकल्चर में फायदा हो और उसका नुकसान कम से कम हो।
1: अच्छा, अगर जनरेशन की बात की जाए, आजकल की जनरेशन जो नौजवान नस्ल है, उसको एग्री टूरिज्म की तरफ किस तरीके से रागब किया जा सकता है?
0: देखिए, उसके लिए रागब करने का तरीका जैसे मैंने बताया कि जो अगर आप छोटे बच्चों में और जो यंग स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, हम अगर फार्मिंग को कूल नहीं बनाएंगे ना, देखिए आप फार्मिंग चूज क्यों करेगा कोई बंदा? अगर फार्मिंग, जैसे आप कोई भी प्रोफेशन चूज करते हैं तो उसका चार्म आपको दिखाया, जैसे कोई कहते हैं जी आप अफसर लग जाएंगे या बड़े आदमी बन जाएंगे या बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे या बिजनेस वुमेन बनेंगी, तो ये सारी चीजें आपको एक चार्म क्रिएट करते हैं। आज की जो हमारी इन्वायरमेंट है, हमने फार्मर को एक इंतहाई निचले तबके का फर्द दिखाया है। आजकल इवन ऐसा भी, ऐसे भी लोग हैं हमारी

नजर आते हैं, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी करते हैं वो, 200-200 एकड़ पे या 50-50 एकड़ पे गन्ना उगाते हैं। 50 एकड़ का मतलब, गन्ना उगाने का मतलब है कि बहुत ठीक ठाक उनकी मतलब इनकम का सोर्स है। उनसे वो भी अपने आप को फार्मर नहीं कहते, कहते अच्छा चलें ये तो फार्मिंग आप ही करते हैं लेकिन और क्या करते हैं, मतलब नौकरी क्या करते हैं आप बिजनेस। तो फार्मिंग को हमने ना प्रोफेशन नहीं बनाया, तो हमें

0: की एक्टिविटीज उसको बच्चे को करवाएंगे, उसको जाके उसको एक अच्छा एनवायरमेंट देंगे, तो उसको लगेगा कि ये एक अच्छा प्रोफेशन है। इसी तरह ही मैं, मेरे कहने का मतलब है, ये लंबी डिस्कशन हो जाएगी, वो मफहूम ये है कि हमें फार्मिंग को मेन स्ट्रीम इज्जत देनी है, फार्मर को रिस्पेक्ट देनी है, फार्मिंग को हमने अच्छा यानी कि उसके अंदर वैल्यू एडिशन करनी है कि नई जनरेशन उसमें जाके काम कर सके। इवन इस वक्त जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, जो कि पाकिस्तान में हजारों की तादाद में सालाना यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स पैदा होते हैं, वो खुद फार्मिंग नहीं करते, जिन्होंने जिनको कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन है, जिनकी मास्टर्स जिन्होंने एग्रीकल्चर में किया है या फॉरेस्ट्री में किया है, सवाए चांद एक की नौकरी को मिल जाए, बिल्कुल और नॉट प्रैक्टिसिंग दीज फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो हमें यह करना है कि हमें उनको ज्यादा ज्यादा फैसिलिटेट करना है, उनको ज्यादा ज्यादा उनके शोबे की रिस्पेक्ट करनी है, और उनको उनके लिए सालाना फार्मर, अगर कोई बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, जैसे हमारे यहां सतारा इम्तियाज देते हैं ना आप क्यों पाकिस्तान में किसी सबसे अच्छे ग्रोअर को, जिसने गंदम सबसे अच्छी ग्रो की है, या उस रीजन को आप क्यों नहीं सतारा इम्तियाज देते, आप क्यों नहीं सबसे अच्छे मैंगो के फार्मर को सतारा इम्तियाज देते, आप क्यों किसी सिट्रस के फार्मर को या गन्ने के फार्मर को या किसान को, आप अगर रोजाना किसान का क्यों हिस्सा नहीं है हमारी डेली डे रिस्पेक्ट के अंदर। हम मैं किसी शोबे के खिलाफ नहीं हूं, मैं सब दोस्तों का इज्जत करता हूं, लेकिन जो हमें, अगर आप, मैं अभी आपसे पूछूं या अभी आपके सुनने वाले से पूछूं कि टॉप 10 प्रोफेशंस आपकी नजर में कौन से हैं, तो उसमें फार्मर क्यों नहीं है? ठीक है, हम अगर ए बी सी डी ये 10 नाम गिनेंगे कि हमें आप जाना चाहते हैं या मैं ये बनना चाहती हूं, तो उसमें फार्मर क्यों नहीं है? इसलिए कि उसका हमने चाम ही पैदा नहीं किया, उसका इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कमाया नहीं जा सकता, उसमें पैसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, हम उसको एक छोटा काम समझते हैं, उसको ऐसा ऐसे काम से समझते हैं जैसे तो घर में हमारे सफाई करने वाला है। तो ये चीज हमें खत्म करनी होगी, तो तब यंग जनरेशन की इज्जत होगी।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल, वेरी वेल सेड, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा ख्वाजा मजहर इकबाल, आप हमें बताइए कि सेगमेंट का टाइम भी इख्तिताम को जा रहा है, तो आखिर में आप हमारे सुनने वालों को एग्री टूरिज्म के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे?
0: मैं तो सादी सी बात करूंगा कि जिसका गांव है वो अपने गांव जाया करे, जिसका गांव खो गया है वो अपना गांव तलाश करे, और जिसका गांव नहीं है वो अपना नया गांव बसाए। मेरा आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप, अगर आपका कोई जाती गांव नहीं है तो आप गांव ढूंढें, गांव नया बसाएं, किसी दोस्त के गांव जाएं, गांव से कनेक्ट हों, अपने विलेज के जो लाइफस्टाइल को उसको अडॉप्ट करें, मिट्टी के साथ कनेक्टेड हों, पैदल चलने की प्रैक्टिस करें, सेहतमंद चीजें ढूंढें। आप जिस तरह सुपरमार्केट्स में जाते हैं ना साल में सैकड़ों दफा, आप बड़े बड़े स्टोर्स पे जाते हैं, आप बड़े बड़े फूड चेन पे जाके फास्ट फूड खाते हैं, तो महीने में एक दफा किसी फार्म पे भी जाएं, किसी फार्म का टूरिज्म भी करें, किसी फार्मर को भी जाके, किसी एग्रीकल्चर, जो चीजें आपके घर में आती हैं ना, मिसाल के तौर पे आपके घर में दूध आता है, ठीक है, तो कभी किसी दिन सोचें कि मैं जाके देखूं कि दूध आता कहां से है, और मैं उस दूध के गवाले को जाके सिर्फ सलाम करूं और बोलूं कि दूध वाले भाई यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपकी आपको मुबारकबाद, आज मैं आपके जो है ना ठंडा जूस का जो है ना ग्लास लेके आया हूं और आपको मैं इज्जत देना चाहता हूं। तो ये हम दूध तो रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने आज तक कभी जाके उस फार्मर को जाके ये नहीं कहा कि जी आप दूध कैसे ग्रो कर रहे हैं, अभी क्या मुश्किलात हैं। तो हमें साल में एक दफा, महीने में एक दफा किसी न किसी गांव जाके उस सारी चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और यहीं से एग्री टूरिज्म की बुनियाद पड़ेगी।
1: थैंक यू सो मच ख्वाजा मुअज्जर इकबाल, आप हमारे साथ रहे, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
0: थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। और ये था आज का सेगमेंट, और हमारे साथ थे ख्वाजा मजहर इकबाल जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं ग्रीन हाउस फार्म एंड एग्री टूरिज्म पाकिस्तान के। और आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, हमेशा की तरह हरा भरा पाकिस्तान जिसको सपोर्ट करता है हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान, आज का सेगमेंट यही खत्म होता है। इंशाल्लाह इस सेगमेंट में दोबारा कल आपकी और हमारी मुलाकात होगी, और सेगमेंट है ये एक्सटेंड करके, थर्सडे से एक्सटेंड करके वेनसडे एंड थर्सडे कर दिया गया है, तो आप ये सेगमेंट दो दिन जो है मेरे प्रोग्राम में सुन सकते हैं। तो बिल्कुल आज का सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है, और इसी के साथ हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन जी एफएम रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। खूबसूरती का असल राज सिर्फ बी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। बी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: छा तवां भी पंहिंजे ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी।
2: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में,
1: सखर शिकारपुर रोड ते,
2: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामने,
1: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
2: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो।
1: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
2: रिहाइशी प्लॉट्स 80, 120, 150 ऐं 200 गज जा,
1: ऐं कारोबारी मौक़े लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज ऐं 600 गज।
2: हिते तव्हांखे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं,
1: साफ़ मिठो पाणी,
2: बिजली, गैस,
1: 24 कलाक सिक्योरिटी,
2: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि, हीउ मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे
1: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौक़ो बणाए थो।
2: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
1: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री।
2: कॉन्टेक्ट
1: 03009317252
2: एंड 03132757860। हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
1: तव्हांजे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल ऐं बहितरीन इन्वेस्टमेंट जो बहितरीन इंतिखाब।
3: यार मां छा कयां, किथे वञा, घर में वेठो आहियां पर ठीक ही न आहियां। शायद मुझे जिंदगी लाइ का दवाई नाहे ठही।
1: छो भला, छा थियो आहे तोखे? साफ़ साफ़ ॿुधा मसलो छा आहे।
3: यार हिकु मसलो हुजे त ॿुधायां।
4: जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील महासे और बेजानपन, अब सबको कहे अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूम के लिए अब कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
1: खुशखबरी, खुशखबरी अवां जे बारे जे बेहतरीन करियर आए, रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर आए।
2: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. वापस आ चुके हैं जी, लास्ट लगी है एंड लास्ट में हम एक दो या तीन लास्ट लकी कॉलर्स लेंगे और उनसे पूछेंगे आज की अच्छी बात.

0: ओके जी, लास्ट लकी कॉलर लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। हेलो। ओके जी, हम चेक करेंगे एक बार फिर से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आवाज नहीं आ रही है मुझे, और क्यों नहीं आ रही है? हेलो। ओके जी, एक और ट्राई करेंगे। हेलो,
1: आवाज आ रही है अभी?
0: हाँ जी, अभी आवाज आ रही है। मुझे बताइएगा कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी, सईद अहमद बात कर रहा हूँ, सिंध सोसाइटी सखर से।
0: अच्छा जी सईद अहमद, मुझे बताइए आज की अच्छी बात क्या है?
1: आज बातें हर चीज अच्छी होती है, बस वो जो आपने सेगमेंट शुरू किया था वो आधा घंटा में ब्रेक पे चला गया, आपने पहले अनाउंसमेंट ही नहीं की, मैं वो सुन ही नहीं पाया।
0: नहीं, मैंने बिल्कुल अनाउंसमेंट की थी, असल में मेरी अनाउंसमेंट आपने सुनी नहीं होगी।
1: अच्छा, मैंने नहीं सुनी होगी, बिल्कुल सही बात है यार जी। वो आप प्रोग्राम दो दिन हफ्ते में कर रही है ना, पहले तो थर्सडे को होता था, अभी आपने वेडनेसडे को भी शुरू किया। मैं बहुत शौक से सुनता हूँ आज ये प्रोग्राम बराबर पाकिस्तान। अच्छी बात ये, जितना हो सके इंसान अल्लाह को याद करे, ये जो दौर चल रहा है नमाज पढ़े, और जो भी हो सके अच्छे अच्छे काम करे, किसी के साथ फिरार धोखा ना करे, इससे ग्रोथ करे आदमी, क्योंकि आजकल आदमी ज्यादा फिराड और धोखा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बस किसी भी तरह के हर कोई कह रहा है मेरा मफाद पूरा हो जाए बस, और वादा खिलाफी इंसान बहुत करता चला जा रहा है। इस दुनिया में तो उसके मफाद हासिल हो जाएंगे यार जी, मगर उस जान में बहुत तकलीफ आ जाएगी।
0: चलिए जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सईद अहमद। अल्लाह हाफिज। ये थे लास्ट लकी कॉलर आज के, और इसी के साथ हम प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होगी शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक, सुनना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दिस इज मी आरजी रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमानी खुदा, अल्लाह हाफिज।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसई नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 12 PM। दिस ट्रांजैक्ट इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन।
5: अच्छा भी कह भी दो, वरे वजीर मुराद अली शाह चवन है तो बजट में हर तबके जो ख्याल रखे वो है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायतों अमल कदे गुर्बत के खात्मे के लिए खास कदम खाया वायान। औरतन की घट में घट उजरत बाबत भी अहम फैसलो किया वो है। वरे वजीर मुराद अली शाह मंझंद 3 बजे बजट सिंध असेंबली में पेश कदम।

0: खाते जे लाइ 30 अरब 80 करोड़, वर्क्स एंड सर्विसिस खाते जे लाइ 31 अरब 59 करोड़ ऐं पब्लिक एमपीए ऐं सिंध जे एमएनए ज़रिए मनसूबा ॾियण वारी सस्टेनेबल कैमराज लॻाइण जे लाइ 90 करोड़ रुपया मुख़्तस। लाड़काणो में 600 बिस्तरनि जी अस्पताल जी अदावत जे लाइ 5 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। 295 स्कूल खे अपग्रेड करण जे लाइ 9 अरब रुपया रखिया विया। एनएफसी को सहीफ़ो नाहे जेको तब्दील न थी सघे, शयूं तब्दील थींदियूं रहंदियूं आहिनि। वफ़ाकी वज़ीर राणा तनवीर क़ौमी असेंबली में बजट ते तक़रीर कंदे चयो आहे त बजट अवाम दोस्त आहे, अपोज़िशन बिना जवाब
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: कोक स्टूडियो सीजन 9।

तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजब दंदड़ा तमाम खूबसूरत मासूम ही सुने समात उनके मुझे दरफा अस्सलामु अलैकुम। बुरखुलों दुआओं के संबंध और चाहतों के बारे चलास वल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नींद से जागता जमीन से आसमान तक, जिंदगी से मौत तक, सांस से तार तक, हम से खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। मौजूद है यहाँ पर हमारे साथ सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन महरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वाइट एशियन डीज कैन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम वाइट एशियन डीज कैन ब्यूटी शो आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डीज कैन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावल से। तो ये प्रोग्राम स्पेशली आप लोगों तक स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है बिल्कुल जनाब, जिसमें आप लोगों को हम बताते हैं वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डीज कैन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती को वेलकम करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए और वो तमाम लोग, वो जितने भी लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं जो कि अपने चेहरे का ख्याल रखना चाहते हैं, खूबसूरतियां हासिल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम में जनाब आप लोगों के साथ मौजूद रहते हैं, प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं, आप लोगों का साथ हमारे साथ मौजूद होता है और ये सिलसिला जारी और सारी रहा जाएगा पूरी पूरी तीन बजे तक। तो पूरी पूरी तीन बजे तक मैं आप लोगों के साथ मौजूद रहूंगी, यानी कि आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद रहेगी और मेरे साथ कौन मौजूद रहने वाले हैं वो तो आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ अपने हाल चाल बताते जाइए। सो कैसे हैं आप सर? ऑप्शन शदीद उनके बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल हमारे इंतजार कर रहे होंगे। तो आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुके हैं इस प्यारे से प्रोग्राम में आप लोगों के साथ साथ जनाब, और हम यहाँ पर बातें करते हैं जी खूबसूरती की। और साथ साथ जो है ना, आप लोगों को बताया जाता है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग जानना चाहते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है हमारी जिंदगी में जो कि ना हम फेस नहीं कर पाते हैं, और उनसे सबसे इम्पॉर्टेंट वाली जो चीज होती है वो ये होती है कि हमें पता नहीं चलता कि कौन से प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से प्रोडक्ट हम जो है ना वो अपनी लाइफ में जो है ना वो एड ना करें। तो इन तमाम तरह बातों का जो है ना वो तबसरा होता है इस प्रोग्राम में, आप लोगों को बताती हूँ बहुत सारी बातें जो कि शायद आप लोगों के काम आ जाती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं, बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए आके हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे खवातीन जो कि हमें किचन में सुन रही होंगी। तो तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ हम ऐसा करते हैं यहाँ पर आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में आगे से प्रोग्राम किया जाता है, उसके बाद जो है ना वापस आकर आपको बताते हैं इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है। बहुत सारी चीजें जो कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के साथ साथ हम जनाब करेंगे, और आपका हमारा साथ जो है वो कैसे जुड़ने वाला है, कौन से लोग हमारे साथ मौजूद है, किस तरह ज्वाइन करेंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो है ना वो आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं एक बहुत प्यारे से कसीदे के साथ। तो कसीदा सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है। आप सुन रहे हैं वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। लगाते जाइए और खूबसूरतियां हासिल करते जाइए।

0: ओके जनाब, सब प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आपके सिदरा आपके साथ मौजूद है और मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और सामने प्रोग्राम होना चाहते हैं। बिल्कुल जी, हो जाइए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा और बताएंगे क्या तरीकेकार है। लेकिन उससे पहले जो है ना, आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए जाने भी आ जाता, आप लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ। वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सारे लोग मुझे बताएंगे कि मुहर्रम का क्या मतलब है। हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे बताइए आज मुहर्रम का क्या मतलब है। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं फेसबुक पर, तो जनाब हमारा पेज है जी लाड़काना FM 88.8। अगर आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। तो पेज पर आइए और आप जो है ना, जैसे ही पेज को सर्च करते हैं, पेज को ऑन करते हैं, तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर कर देते हैं। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करके बताइए कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो बिल्कुल जी, आप लोग हमारे प्रोग्राम की रौनक ही होते हैं, जल्दी से हमारे प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ाइए और हमारे साथ साथ जुड़ते जाइए। इसके साथ साथ मुझे बताइए कि मुहर्रम का क्या मतलब है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद नहीं जानते होंगे। तो मुझे जल्दी से बताइए, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जो इतने लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, तो क्या वो जानते हैं कि मुहर्रम का क्या मतलब है। और इसके साथ साथ आप हमें सुन रहे हैं जनाब, बहुत सारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जा रहे हैं। जल्दी से बनते जाइए, कहाँ से हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को जो बातें बताती हूँ वो जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में होती हैं। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र हम क्यों ना करें जनाब, क्योंकि ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो बिल्कुल जी, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, बताएंगे हमें जल्दी से। और साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डायल करते हैं 03-15-799-0595। जल्दी से इस नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए, ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर आपके एरिया में ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर नजीर खोसो भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं बलोचिस्तान से, वेलकम करते हैं और लिखते हैं कि हमारे लिए लम्हा फिक्रियार ये है कि अच्छी बातें ज्यादातर हमारी गुफ्तगू तक हमारी फोन की गैलरी और स्टेटस पर तो मौजूद होती हैं, जबकि हमारे अमल और किरदार से गायब होती हैं। या बिल्कुल तमाम सही गाल गई है। और प्रिंस अफजल शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, थैंक यू सो मच। और वहीद वफाई हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा जी, क्या हाल है आपके, मैं ठीक, कहते हैं आपकी माशाल्लाह प्रोग्राम बेहतरीन होते हैं, फ्रॉम जेकब आबाद से आप हमारे साथ मौजूद हैं, सो बहुत शुक्रिया। और फिरोज अली बरोही हमारे साथ मौजूद हैं, हाय। और जी हमारे साथ ही आकाश अली मोरो से मुलायम इस्लाम मदद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अदी केड़ा हाल है अवां जा, असा तवां जो प्रोग्राम फैमिली सा गड बुधन आयो, प्लीज प्ले नोहा हर जमाना मेरे हुसैन का, बिल्कुल जी बिल्कुल लगाते हैं आपके लिए। और कहते हैं रहमान अली पीरजादो, दिलेर जान पीरजादो फ्राम मोरो, आपका शो बहुत अच्छा है और थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आपकी मोहब्बतें हैं जनाब। और मुलायम मुजाहिद बोजार हमें सुन रहे हैं ठूप चूसल से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा जी, केड़ा हाल है अवां जा, सब ठीक है, तां बुधाई किया। और मलिक जफर रत्ता हमारे साथ मौजूद है, आप हमारे साथ हैं जी, मोहम्मद बख्श पाकिस्तान रेलवे गेट में, तो
1: नादे अली को पढ़ना सुन्नते रसूल।
0: ओके जी, यानी कि आपको भी खुशामदीद कहा जाता है। उसके अलावा पोस्ट को आपने लाइक और शेयर करना है बहुत ज्यादा वाला, ताकि बहुत से लोगों को हम बता सकें कि प्रोग्राम जो है ना, आप लोगों को बताया जाता है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। और बिलाल अली कहती है अस्सलाम वालेकुम, की आयो सिद्रा, मां ठीक है, तां बुधा की आयो बिलाल, आई बिल्कुल तमाशा की ज्वाइन करना वाणो तमाम जो प्यारे प्यारे गालू हुंदी जो के प्रोग्राम जो हिस्सो हुंदी तमाशा कचरियो कंदासी तमाम सागर जी को प्रोडक्ट जो जिक्र कंदासी, प्रोडक्ट जे बारे में खोर सारी गालू कंदासी, तमाम जो संजो साथ पूरी पूरी 3 बजे ताई मौजूद रहंदो। सो तमाम कारी ने मंजो ते बैठा हो जो हने टाइम थाय जनाब, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ हलूं था, उनका पोए जे को ना वापसी जल्दी तमारी मोटी जो तमाम कारी ने मन्यो, आई ऐसा सिकर मौजूद रहो बुधा रहो प्रोग्राम व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी।

0: जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा मियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो लई।

ओके जनाब, सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरण, मेहरापुर, मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो अगर हम यहाँ पर बात करें व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी। बिल्कुल जी, अगर यहाँ पर खूबसूरती की बातें होती हो और खूबसूरती वाले प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत सा फायदा तो होगा। अगर आप ये सोचें, अगर आप ये समझें कि आप लोगों के लिए मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं जो कि फुल नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए हैं, और उससे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि आपके ऑल स्किन टाइप के लिए तैयार किया गया हो तो आपको सुनकर अच्छा लग रहा है, जैसे ही अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छा फील होगा, क्योंकि आप लोग वो चीजें वाजे देखेंगे जो कि चीजें शायद आप कभी सोच रहे होते थे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए इतने अच्छे और इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि जब आप इस्तेमाल करने बैठते हैं तो आप खुद ही कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो है ना वो सारे प्रोडक्ट मार्केट में, कि आप लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करने, अलग अलग प्रोडक्ट्स के पीछे भागना है, बस आप लोगों ने व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना ये सिलेक्ट कर लेने हैं और आपने इस्तेमाल करना शुरू करना है। तो बिल्कुल जी, अगर उन लोगों को बताते चलें जिनको नहीं पता कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे कि अगर आप अपनी ब्यूटी को निखारना चाहते हैं, ब्यूटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट है। जैसे कि आप लोगों को नाइट क्रीम मिल रही है, आप लोगों को फेयरनेस क्रीम मिल रही है, एक्नी ट्यूब मिल रहा है, साबुन मिल रहा है, फेस वॉश मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इजीली जो है वो परचेज कर सकते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है मार्केट में, आप जाते हैं बस परचेज करके आते हैं। और व्हाइट एज ब्यूटी सोप अवेलेबल है, व्हाइट एज एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयार किया गया है, और उसके अलावा जो है ना व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम भी एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयार की गई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें व्हाइट एज लवली क्रीम की, तो व्हाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है, वो लोग जो कि भाई मेकअप नहीं लगा पाते हैं, तो आपने व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करना है। तो व्हाइट एज लवली क्रीम के इस्तेमाल से आप लोगों को क्या फायदा पहुंच है, तो इसकी जानब आते हैं। तो आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि जब आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो कि भाई आप लोगों का जो है ना ही इतना ज्यादा वक्त लेता है, ना ही आपके इतने सारे पैसे लगते हैं। आप लोगों के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बस आप लगाते हैं और आप रेडी हो जाते हैं। आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई इस तरह का सीन आपकी जिंदगी में चल रहा है कि भाई हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है और लेकिन हमने ग्लो भी करना है और हमने जो है ना वो खूबसूरती भी हासिल करनी है, तो व्हाइट लवली क्रीम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। और ना सिर्फ ये आपकी खूबसूरती को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है बल्कि इसके अंदर जो है ना वो सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, और सनस्क्रीन ऐड करने का रीजन ये था कि भाई आप लोगों को जो है ना वो सूरज के ये जो नुकसानदार असरात होते ना इनसे भी आप लोगों की स्किन की हिफाजत की जाए। तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि फुल ऑफ विटामिंस का फार्मूला है, उसके अंदर जो है ना वो सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, तो बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है आप लोग तमाम ब्यूटीज के लिए। जितने भी खूबसूरत लोग हमें सुन रहे हैं और खूबसूरती को मेंटेन रखना चाहते हैं, खूबसूरतियां हासिल करना चाहते हैं, तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप लाजमी मेरे कहने पर ट्राई करके देखिएगा। और इसमें कोई भी एज लिमिट भी नहीं है कि भाई आपने इस उम्र में जाकर लगाना है, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, मर्द, हजरात हो, खवातीन हो, तो आप सारे इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरती जो है ना वो आप देखेंगे कि आपको किस तरह मिलती जा रही है। और उसके अलावा डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब का अगर हम जिक्र करें तो डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ना ये उन लोगों के लिए, उन खवातीन और मर्द हजरात के लिए, टीन एजर्स हों या फिर आपकी एज कितनी भी ज्यादा लेकिन आपके एक्नी नहीं जा रहे हैं, एक्नी तो चले जा चुके हैं लेकिन आपके चेहरे पर जो एक्नी के निशानात हैं वो नहीं जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा निशान है, कोई कट है, कोई जलने का निशान है जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है ना परफेक्ट प्रोडक्ट साबित होगा डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब। ये आप नाम याद रखिए क्योंकि जब आप अपने लिए परचेज करने जाते हैं तो आपको नाम आना चाहिए। तो नाम है जनाब डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब। ये आप परचेज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है, आप इस्तेमाल करें
लेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब की खास बात यह है कि इसे आप जो है ना अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसे आप अपने किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप लोगों की जो फेयरनेस है वो भी आपको मिलती रहेगी, आप लोगों के चेहरे पर जो गैर जरूरी निशानात हैं, कोई भी कट है, कोई इस तरह का कोई निशान है या फिर एक्नी प्रॉब्लम आपके साथ बहुत ज्यादा होती है तो वो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ये कंट्रोल कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है तमाम जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं और आपके हर एरिया में, हर दुकान पर, हर गोठ में, हर सिटी में मैं चाहती हूं कि अवेलेबल होने चाहिए, तो जल्दी से अवेलेबल कराइए। उसके लिए थोड़ी सी आप भी मेरी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वो ऐसे कि आपको जो नंबर बताया जाता है प्रोग्राम के अंदर, मुझे नहीं ना पता कि कहां कहां पर अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो आप थोड़ा सा जो है ना ये काम कर दिया करें कि जो नंबर आपको बताया जाता है उसके ऊपर आप कॉल या फिर मैसेज छोड़ दिया करें, उन्हें बताएं कि भाई आप कहां से शो सुनते हैं, आपके एरिया में नहीं मिल रहे वाई टेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट, ताकि वो अवेलेबल करा सके। तो जल्दी जल्दी से आप जो है वो नंबर डायल कीजिए और नंबर है 03-15-799-0595। ये नंबर आप लाजमी डायल कीजिएगा ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर पर भी अवेलेबल हो सके वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप लोगों को बताते हैं तफसील के साथ, लेकिन फिलहाल जो है वो बारी आ चुकी है कि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप अच्छे से जान सके। और इसके साथ साथ मैंने आज प्रोग्राम में आप लोगों से जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल ये पूछा कि आप मुझे बता रहे हैं कि मुहर्रम का मतलब क्या है।

ओके जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आप जो है वो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, और यहाँ पर आप लोग हमारे साथ मौजूद दीजिए, आपके फीडबैक्स की जाने बात है। अच्छा आकाश अली कहते हैं आप ही, मैं मोरो से हूँ। ओके आकाश भाई, आपको वेलकम करते हैं। मोरो वाले सब खूबसूरत लोगों को वेलकम किया जाता है। और उसके अलावा जी अब्दुल गफार हमारे साथ हैं, कहते हैं माइनर मेलसी से मास्टर अब्दुल गफार, मोहम्मद बिलाल और मास्टर सईद नूरशाही और मास्टर वजीर अहमद चौहान हमारे साथ हैं। चलें सब भाइयों को वेलकम किया जाता है। और एएम अंसारी हमारे साथ, ओके जी। सो एएम अंसारी लिखते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्गी यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है इस नातवा। सलाम एंड वेलकम इन शो, गुड इवनिंग ऑल। चलें जी वेलकम करते एएम अंसारी आपको, बहुत ही अच्छी सी कमेंट के साथ आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होता है। थक जाओ तो उसकी गोद में सर रख दो, बिल्कुल जी।

ओके जी, सो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बता रहे हैं कि मुहर्रम का क्या मतलब है, और दोदा अली भाई हमें सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं। फहीम शेख हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। रेशम गली लाड़काना खां तवां से सगड़ मौजूद आयो, आपका शो सुन रहा हूँ, फर्स्ट टाइम शामिल हुआ हूँ, क्या बात है जी, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। और किशोर भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, अदा खुश आयो जी, सफा तामदा की आयो। और बिलाल कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों से बदला मत लिया करो क्योंकि खराब फल खुद ब खुद दरख्त से गिर जाया करते हैं। बिल्कुल जी। और गुड गुड हमारे शो में शामिल है जी, आपको भी वेलकम करते हैं। चाचा खाले जुड़ी जो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। और भक्त अली सियाल हमें सुन रहे हैं जनाब, आपको भी वेलकम कहते हैं। और हैं जी दर्दे दिल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, वालेकुम अस्सलाम प्यारी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। वरियाम अली जतोई कहते हैं, सिद्रा शो में अवहां के दिलन सा वेलकम था कयूं, अवहां के भी वेलकम था कयूं बाबा। और चाचा खालिद कहते हैं, आज शो का आगाज तो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया जी, ये जो चार पांच दिन हम प्रोग्राम करेंगे वो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, एहतराम बहुत जरूरी है।

0: अच्छा किशोर भाई कहते हैं यदि मु आंसर डिलीट कयो आ अगर समझी सगो तो बेहतर आ माने तमा जो जको जवाब हो ना वो सही हुयो
1: मर जाऊं तो कफन पे भी लिखना।
0: चलें ठीक है आप पैनल पर भी हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, पैनल पर भी आपके मैसेजेस हैं, बिल्कुल सबको जो है ना वो शामिल प्रोग्राम रखा जाएगा। और आप जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, ये आप लोगों की मोहब्बतें होती हैं जो आप हमारे पोस्ट से करते हैं, तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और जनाब बताइए कि क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर अभी तक पेंडिंग में है, तो इतना ज्यादा मत सोचा करें कि आपकी खूबसूरती जो है ना वो ऐसा है कि भाई जब आप अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखते हैं, जब आप अपने चेहरे को वो प्रोडक्ट नहीं दे पाते हैं जिनकी आपकी स्किन को जरूरत है, तब आपकी स्किन जो है ना वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन खराब ना हो तो आपने वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। तो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आपको इजीली मिल रहे हैं, तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से नाम लेकर तलब कीजिए और डायल कीजिए 03 15 799 0595।

अच्छा, दर्दे दिल हमारे साथ हैं, कहती मुहर्रम हमें सब्र, कुर्बानी और हक पर कायम रहने का दर्ज देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि सच्चाई और इंसाफ के लिए हर कुर्बानी दी जा सकती है, मगर हक का रास्ता नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल जी। और कहती है, ओ मेरी जानी अलीजा सलाम बोल रही और शो सुन रही है, दोनों परियों को वेलकम किया जाता है। एम अंसारी आपने शायद, हाँ जी चलें ठीक है, लगाते हैं जिन जिन लोगों ने फरमाइश कर दी है। कोशिश करूंगी कि सबके जो कसीदे हैं, कलाम है, वो शामिल प्रोग्राम किए जाएं, ठीक है। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं, मुझे तो डी स्किन क्रीम के प्रोडक्ट्स में फेस वॉश और सोप एंड शैम्पू खपे, बट मिस्टर इरफान सियाल साहब डू नॉट। अच्छा चलिए, आपने रब्ता किया उनसे, वैसे बताइए जरा। मुझे तो जितना पता है कि वो इरफान साहब जो है ना, वो सारे लोगों को रिस्पांस देते हैं, और अगर आप उनसे रब्ता करते हैं तो वो आपको गाइड कर देते हैं कि आपने कहाँ से परचेज करने हैं, या फिर जो भी चीजें आप उनसे पूछते हैं वो आपको जो है ना, वो अच्छे से गाइड कर देते हैं। तो आप नंबर के ऊपर रब्ता करते रहें। वैसे अभी जितने मार्केट में प्रोडक्ट आए हैं तो आपको वही मिलेंगे ना, बाकी जो बनाए जाएंगे तो वो आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तो अभी डी स्किन का फेस वॉश और जस्ट क्रीम मौजूद है, तो आप ये दोनों चीजें परचेज कर सकते हैं। ओके जी। और उसके अलावा कहते हैं कि अल्लाह पाक से ताल्लुक और उसकी मखलूक से भी, क्योंकि हर दिल में अल्लाह पाक है। ये तो सही बात है वैसे, लेकिन ऐसा नहीं कि ना कि आप सिर्फ दुनिया की भीड़ में जो है ना वो गुम हो जाएं। और साबिर खान हमें सुन रहे हैं वाले।

अॼु दिलि सयो सिदरा जो प्रोग्राम ॿुधूं ऐं शामिल बि थियूं सो बाबा तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधूं पिया और ज़ीशान राजपूत हमारे साथ हैं हेलो वासा भाई भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं सो वासा भाई आपको भी खुश आमदीद कहा जाए

ओके जनाब, से प्रोग्राम में आपका हमारा साथ जो है वो पूरे तीन बजे तक आए, आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं पूरे तीन बजे तक। और यहाँ पर प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा, हम न्यूज ब्रेक की जानेब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए।

0: समझिए सक्कर FM 80।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: It's 2 PM. This time check is brought to you by
4: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: अरब रुपया कई वई गैर तरक़ियाती बजट 418 अरब रुपयनि जी वरी वॾे इज़ाफ़े सां 2560 अरब रुपया करण जी तजवीज़। KTN न्यूज सिंध जी बजट जा मुकमल तफ़सील हथ करे वरिता। ज़िलनि जे तरक़ियाती बजट 55 अरब रुपयनि मां घटाए 15 अरब करण जी तजवीज़ शामिल। बोर्ड मुतासिर घरनि जी तामीर वारे प्रोग्राम जे लाइ 97 अरब रुपया मख़्तसु।

सिंध जी बजट में आपाशी खाते के लिए 30 अरब 80 करोड़, वर्क्स एंड सर्विसेस खाते के लिए 31 अरब 59 करोड़, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते के लिए 40 अरब 86 करोड़ रुपया मुख्तस कया व्या।

एम पी ए ऐं सिंध जे एम एन ए ज़रिए मनसूबा ॾियण वारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेगा रिथा लाइ 29 अरब रुपया मख़्तस। कराचीअ जे 25 वॾनि मनसूबनि जे लाइ 14 अरब 11 करोड़ रुपया रखिया विया। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 1 तहत 1300 नयूं सीसीटीवी कैमराज़ लॻाइण जे लाइ 90 करोड़ रुपया मख़्तस। लाड़काणो में 600 बिस्तरनि जी अस्पताल जी अॾावत जे लाइ 5 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। 295 स्कूल खे अपग्रेड करण जे लाइ 9 अरब रुपया रखिया विया। एनएफसी को सहीफ़ो न आहे जेको तब्दील न थी सघे, शयूं तब्दील थींदियूं रहंदियूं आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर राणा तनवीर क़ौम असेंबली में बजट ते तक़रीर कंदे चयो आहे त बजट अवाम दोस्त आहे, अपोज़िशन बिना जवाब तनक़ीद करे रही आहे। राणा तनवीर जी तक़रीर दौरान पीटीआई ऐं लीगी एमएनएस में सख़्त जुमिलनि जी ॾे वठि बि थी। ॾुखियुनि हालतुनि में नून लीग जी क़यादत मुल्की मईशत खे संभालियो, मुख़ालिफ़ बि बजट जी वाखाण करे रहिया आहिनि। सुस्तमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारण ऐं मुमलिकती वज़ीर बिलाल अज़हर कयानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारण चयो त पीटीआई मुल्की मईशत जो बेड़ो ॿोड़ियो, नून लीग तारियो आहे। बिलाल अज़हर कयानी पारां बजट पघारदार तबिके जे लाइ रिलीफ करार। खोरवा भरिसां औरत कार इल्ज़ाम हेठि कुहाड़ियूं हणी क़तल, ॿ ॼणा ज़ख़्मी। पुलिस जो चवणु आहे त ॻोठ वरियो ख़ासकेलीअ में जवाबदार हुसैन ख़ासकेली आमना ख़ासकेली खे कुहाड़ियूं हणी क़तल कयो। पुलिस लाश ऐं ज़ख़्मीनि खे अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। जवाबदार गिरफ़्तार, कुहाड़ी हथ। कंधकोट में बिजली जी लोडशेडिंग ख़िलाफ़ शहरनि जो एहतजाज। सियासी, समाजी, मज़हबी जमातुनि ऐं सिविल सोसाइटी पारां सेप्को इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मुजाहिरीन चयो त सेप्को इंतिज़ामिया जी गफ़लत सबबि शहर में बिजली जो संगीन बुहरान आहे। सख़्त गर्मीअ में बिजली जी बंदिश जो सिलसिलो ख़तम कयो वञे। उलोलाल जे ॻोठ अलाबख़्श मीरजत जे रहवासियुनि जो बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। चूंडल नुमाइंदनि ख़िलाफ़ नारेबाज़ी, ॻोठ खे बुनियादी सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो। ॻोठाणनि चयो आहे त इलाइक़े जा चूंडल नुमाइंदा वोट वठण बाद गुम आहिनि, केर बि ॻोठ जा मसाला हल करण जे लाइ तयार न आहे, मसाला हल कया वञनि।

0: मटियारी भरिसां नारी मुबैन तौर अगवा वालिद जो वकार चंड नाले नौजवान ते धीउ खे अगवा करण जो इल्ज़ाम। पुलिस वटि रिपोर्ट बि दाख़िल कराए छॾी। मेहर मां 8 महीना अॻु मुबैन तौर अगवा थियल शागिर्दयाणी खालदा सुमरू जो बि हाईकोर्ट जे हुकुम ते केस दाख़िल। शाहिद जोगरो अब्दुल अज़ीज उर्फ़ अज़ीज उमराणी ऐं ॿिनि अणॼातल जवाबदारनि ते केस दाख़िल। ऐं डिब बेहर शाह में जस्कम ऐं शहरनि जो बदमनी ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो ऐं धरणो। मुज़ाहिरनि मूजिबि शहर ऐं भर पासे बदमनी चोट चढ़ियल आहे। पुलिस नाकाम थी वई आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: सिंध की आवाज
3: और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो।

शुक्रिया जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके साथ है। सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड ई स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ई स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनके बारे में जानना आप चाहते हैं और ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं जो कि लगाते साथ ही आप लोगों की खूबसूरती जो है वो बढ़ती जाती है। आप लोगों को ऐसी खूबसूरती मिलती है जो कि हमेशा आप लोगों के चेहरे पर बरकरार रह जाती है। तो ऐसा नहीं कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि इस्तेमाल करने के बाद हमने अगर रिजल्ट जो है ना मिल गए उसके बाद हमने प्रोडक्ट को कहीं छोड़ दिया तो फिर हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी कहीं दूर हो जाएंगे। तो ऐसा कोई सी नहीं बनेगा, आप लगाते रहेंगे आपको जो खूबसूरती मिलेगी वो आपकी ही होगी, कहीं नहीं जाएगी। तो बिल्कुल अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप जान चुके कि भाई व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने अच्छे और कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में एंड डी स्किन ब्यूटी जो है ना वो सोप के बारे में नहीं बल्कि फेस वॉश के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो दोनों चीजें तैयार की गई है इसकी क्या ऐसी खास बातें हैं जो कि आपको इस्तेमाल करने पर जो है ना वो ये आप सोच सकेंगे भाई हाँ हमें भी ये जो प्रोडक्ट

इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप लोगों के एरिया में मिल रही है नहीं ये चीज भी बड़ी मायने रखती है। तो अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो भाई आपने डायल करना है 03-15-799-0595। जल्दी से ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर के ऊपर आपके एरिया में आपकी सिटी में ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए और आप वहां से जाकर बस परचेज करके आ जाए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रोबीट फार्मुलेशन से तैयार की गई है और इसके साथ साथ ये ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाती बल्कि आपके चेहरे पर जितने मसाले हैं वो सारे भी खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो मजे की बात है कि सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आप लोगों को बहुत से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो जल्दी से जो है ना तो बिल्कुल जी इस्तेमाल करके देखिए जी स्किन ब्यूटी क्रीम गारंटी के साथ आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और उसके साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन फेस वॉश तो डी स्किन फेस वॉश भी आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो अच्छा साबित होने वाला है। अगर आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी स्किन फेस वॉश जो है ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी स्किन के ऊपर जो है ना वो डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे फायदा ये होता है कि आपकी स्किन जो है ना वो हाइड्रेट रहती है, आपके चेहरे की स्किन ग्लोइंग हो जाती है, आपके चेहरे पर जो है ना ये अंदर तक जाकर आपके चेहरे की खूबसूरती को निखारने में काम करता है। और अगर आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भाई ये लड़कियां लगा सकती हैं, लड़के नहीं लगाएंगे, लड़के लड़कियां सभी लगाने वाले हैं। और ये आप दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कीजिए, अपना अच्छे से फेस वॉश कीजिए और फिर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एक नाइट क्रीम है। तो रात के टाइम इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रोबीट्स फार्मुलेशन से तैयार की गई है। पाकिस्तान में 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि वाइटामिन ई बीट से तैयार किए गए हैं तो उसी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल होती है। तो इतना अच्छा और इतना बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा और जनाब जब आपको रिजल्ट्स मिल जाए अच्छे वाले वो भी 2 रातों के इस्तेमाल से तब आप मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ जी हमें रिजल्ट्स मिले हैं। और अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो साथ ही साथ आप जरूर से डायल कीजिए 03-15-799-0595। ओके जी नंबर डायल करते रहिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए और जनाब वहां से जाकर आप परचेज करते जाइए क्योंकि परचेज करेंगे इस्तेमाल करेंगे तभी तो आप लोगों को खूबसूरतियां मिलेंगी ना। और इसी के साथ साथ जो है ना मैंने आज आप लोगों से प्रोग्राम में जो सवाल पूछा है वो भी जरा दोबारा से रिपीट करते हैं। तो आज के प्रोग्राम का जो आप लोगों से सवाल पूछा गया है वो ये है कि आप मुझे बता रहे हैं कि मुहर्रम का मतलब क्या है। बिल्कुल जी आप मुझे ये बता रहे हैं कि मुहर्रम का मतलब क्या है और साथ ही साथ अगर आप जानते हैं तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए आपके मैसेजेस ही आपके कॉमेंट्स जो कि हम शामिल प्रोग्राम रखते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमें जो है वो मैसेज करना चाहते हैं तरीकेकार नहीं पता आपको तो अपना सेलफोन उठाइए ना बल्कि राइट ऑप्शन में जाइए टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और हमें सेंड कीजिए 8881 पर। ओके जी उसके अलावा जी लारकाना FM 88.8 के पेज पर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। अच्छा यहाँ पर फहीम शेख कहते हैं सिद्रा मुझे बताइए तो कुजा मन कुजा का मतलब क्या होता है। तो तू कुजा मन कुजा का जो मतलब है वो है आप कहाँ और मैं कहाँ यानी तू कहाँ और मैं कहाँ। ये एक ऐसी कन्वर्सेशन है जो कि आप अगर ये गौर से कलाम सुनते हैं तो आप लोगों को समझ आती है बात। तो एक बहुत ही खूबसूरत ये कलाम तैयार किया गया है जो कि अगर आप लोगों को यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आता होगा तो अगर समझ नहीं भी आता फिर भी आप जो है ना ऐसे अच्छे से जो है ना वो वाइब हासिल करते हैं आपको अच्छा लगता है सुनकर। तो बिल्कुल जी ये एक ऐसा कलाम है जो अगर आप जितना भी सुनते हैं तो आप कभी भी जो है ना ऐसा महसूस नहीं करते कि भाई ये क्या आप चला रहे हैं ये क्या हम सुन रहे हैं बल्कि आप जितना सुनते हैं उतना आपको अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ ये बहुत एक प्यारा सा कसीदा किसी ने मुझे फरमाइश कर दी थी शायद तो हम यहाँ पर सुनते हैं और साथ साथ आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।

ओके जी, इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ कहते हैं बाजी मुहर्रम का मतलब है बिल्कुल सही, और कहते हैं कि मेरी फितरत में नहीं है किसी को भूल जाना साहेब, भूलते वो हैं जिनको अपने आप पर गुरूर होता है। क्या बात है इमरान भाई, आपको वेलकम कहा जाता है। और ये हमारे साथ है ओके जी गोट नबीदाद बम्बरो नारी खां इमाम डिनो बम्बरो भाई हमारे साथ कहते प्रोग्राम तमाम नारी सा भेण भली तमाम खुश हो। जी जी बिल्कुल मां खुश आए, तमाम बुधाए की आयो ठीक ठाक आयो। इरम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुझे प्यारी दिलबर दोस्त शाहला, मां ठीक है तमाम बुधाए की आयो। और हैं जी हमारे साथ इमरान भाई कहते हैं बाजी चले इमरान भाई अब आप तो आप बस यहीं पर मैसेज कर दिया करें और बहुत शुक्रिया, झगड़े मत किया करें ठीक है। इतनी शरारतें जो होती ना वो सूट नहीं करती ज्यादातर मुझे लगता है लड़कों के ऊपर, तो बस थोड़ी थोड़ी कम कम शरारतें किया करें और जरा सोबर बन के रहें। मायरा भी हमारा शो सुन रही है, मायरा आपको भी वेलकम कहा जाता है। और साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर भी रही और हमें जरूर बताया करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से या फिर डी स्किन के फेस वॉश के इस्तेमाल से आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं। अगर आप ऐसा है कि क्रीम नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप फेस वॉश लगा सकते हैं और फेस वॉश लगाने के बाद जो है ना आपको जब अच्छे से रिजल्ट मिल जाए तब आप कोशिश करें कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल कर लें ठीक है, ताकि आप लोगों को

अच्छा ये हमारी सादगी दी सिस्टर असां जे सिटी में कोन पे मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम और सिरिंद कंपनी वारा कॉल भी कोन था अटेंड कन चले अच्छा तां कॉल भी ट्राई किया चलो मां कोशिश कदम ता जो ये मैसेज जको न वो कंपनी ताई पहुंचायो वने जे तवां जी कॉल अटेंड कई वने आई तवां जे एरिया में डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जके न अवेलेबल कराया वने ठीक आ सोना भा ता जो मोहब्बतूं ता प्रोग्राम में शामिल थिया अन का अलावा जको आ त अगर तवां इस्तेमाल कयो पया या फिर इस्तेमाल करन चाहो पया त सब का पहली गाल या हुंदी है ज्यादा त तवां जे एरिया में तां जे गोठ में तां जे शहर में मिलन जरूरी है प्रोडक्ट तो मिलंदा न तो तुम वठंदा कि या फिर तुम कंफ्यूज हों असा सिटी वनो या फिर अगर तुम दूर दराज ना वही सो तो उन इो ही मतलब सोलो तरीको है तुम पांच एरिया में अवेलेबल करायो उन नंबर जो बुधाने तो तुम राबो कर अगर नो अटेंड थे नंबर तो तुम मुख्य बुधाओ जी असा तुम शिकायतू जो ना वो मथे पहुंचाऊँ ठीक है ओके जनाब से प्रोग्राम में आपका हमारे साथ पूरे पूरे 3 बजे तक का और 3 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे तो सुनते रहिए और हमारे साथ इसलिए पूरी पूरी 3 बजे तक आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट टाइम हो जाता है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं तो आप हमारे साथ मौजूद रहिए।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream,
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स अवां जी स्किन के बड़ा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज़
1: जी FM 91.6।

ओके जनाब, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मिहरापुर, मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं हमें बता रहे हैं, और साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं ये भी हमें बताते जा रहे हैं। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, आपके एरिया में नहीं मिल रहा, तो डायल करते जा रहे हैं 03157990595। और इसी के साथ साथ आप लोगों को बताया जा रहा है कि जनाब किस तरह से आप जो हैं वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट हो या फिर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट हो, उनके इस्तेमाल से अपनी खूबसूरती को जो है ना वो मेंटेन रख सकते हैं। खूबसूरती हासिल करना, खूबसूरती को मेंटेन करना, ये दोनों एक थोड़ी अलग अलग सी चीजें हैं। खूबसूरती हासिल करना मुझे लगता है कि बहुत आसान काम है, लेकिन खूबसूरती को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो जब ये आसान काम और मुश्किल काम जब आप लोगों के साथ भी हो और आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि भाई हमने खूबसूरती कैसे हासिल करनी है, खूबसूरती को जो है ना वो मेंटेन कैसे करना है, तो ये दोनों चीजें जो है ना आप लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है कि क्या तरीकेकार फॉलो करके आप ना सिर्फ खूबसूरती को हासिल कर सकते हैं बल्कि आप अपनी खूबसूरती को मेंटेन भी रख सकते हैं। तो चाहे आप मर्द हजरात हो, खवातीन हो, हर कोई जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट हो या फिर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट हो, उनका इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में इजाफा लाते जाएंगे। और साथ साथ आपके लिए हर तरह का प्रोडक्ट मौजूद है, यानी कि ऐसा भी कोई सीन नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई मैं ये प्रोडक्ट लगाता हूं लेकिन ये वाला प्रोडक्ट नहीं है। तो हर तरह का प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल रहा है जब आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहें। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं कि जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर स्टार्टिंग से लेकर जो हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। और साथ ही साथ जनाब, मैंने आज आप लोगों से प्रोग्राम में सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं मुहर्रम का मतलब क्या है, और अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वैसे ही तो आप 8881 और फेसबुक पर हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। ओके जी, पोस्ट को आपने लाइक और शेयर करना होता है।

0: ओपीडी तो चाचा खालिद कहते हैं ये जो नंबर आप बता रही हैं जरा धीरे धीरे बताएं ताकि मैं लिख सकूं, तो आप जरा लिखिए नंबर, मैं आपको बताने लगी हूं। ठीक है, ओके सर, नंबर है 03-15-7-99-05-0-3-15-7-99-05-95। ये नंबर है, आप डायल कीजिएगा।
1: एक लाख यूं तो रे नजफ नहीं बनता जवाब दे।
0: अच्छा, अली अकबर बरोही भाई कहते हैं सकरेंट से आपका शो सुन रहा हूँ, सिद्रा जी प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम लाजवाब है, वेलकम, आपको भी वेलकम कहा जाता है। दर्द दिल कहती हैं कि चंदा तुम्हारा शो सुने बगैर सुकून नहीं आता, अल्लाह सच्ची। और बिलाल, लेकिन मौला अली अलैहि सलाम हमें सिखाते हैं कि इंसान को उसके दिल से पहचान। बिल्कुल, ओके जी, संजय जयपाल हमारे साथ मौजूद है। संजय जयपाल, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। और साथ साथ हैं जी किशोर भाई, कहते अदी मथे भी शिकायत नहीं था। हाँ बिल्कुल, नींद आई कहाँ की का शिकायत है, बुधायो तो तव शिकायत भी पहुंचाईंदी। और बिलाल अली लिखते हैं कि मुहर्रम हराम हमें करबला की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने हक सबर और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल कुर्बानियां पेश की। करबला हमें जुल्म के सामने डट जाने और सच का साथ देने और अल्लाह की रजा पर राजी रहने का दर्श देती है। लिहाजा इस मुकद्दस महीने का एहतराम करें और अपनी दुआओं, इबादत और अच्छे इखलाक के जरिए महरमुल हराम की बरकतें हासिल करें। और करबला हमें सिखाती है कि हक की खातिर कुर्बानी दी जाती है, मगर हक का सौदा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जी, ओके जी, ये बहुत ही प्यारा सा कसीदा हमने लास्ट में लगा लिया है, जिसकी हमें फरमाइश एएम अंसारी ने कर दी थी। और मोहम्मद ताहिर लुंड बलोच हमारे साथ मौजूद है, विलेज वलीदात खान लुंड नज़द सेठारजा से। प्रोग्राम लाजवाब आहे, सलाम तमाम जो वने तो सैयद इमदाद अली शाह बुखारी, जवार मोहम्मद बचल शंबानी, कामरान महेसर, अनवर सोलंगी साहब जिनाली। चलिए, बहुत शुक्रिया।

अच्छा खालिद कहते हैं मुझे डी स्किन ब्यूटी क्रीम देखने में भी अच्छी लगती है। हाँ वाकई ये ऐसा जब आप लगाएंगे तो आपको मतलब ऐसा अमीरों वाला फील आएगा, तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। वाकई फेस वॉश की बात की जाए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की बात की जाए, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।

ओके जी क्या बात है। और साथ साथ फजीला सिंधी कहती है कि डियर सिस्टर मैं भी फेस वॉश लूंगी स्वीटी, क्रीम यूज नहीं करती, गर्मी है बहुत, सर्दी में लूंगी। चलें ये भी ठीक है, अच्छी बात है, फेस वॉश का आप इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ साथ हमारे साथ हैं जी ये अफहा डेहरी, सऊद डेहरी फ्राम नवाबशाह कहते हैं मौलान इस्लाम मदद अदी शो तुम्हारा नाइस आए, थैंक यू सो मच प्यारा भा तुम मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पया। और अलमास सोलंगी हमारे साथ हैं, अली वारिस सोलंगी तुम्हारा जो मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पया। ओके जी, सो अज के प्रोग्राम में माँ अवा का सवाल पूछो, यानी कि आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक था वो बिल्कुल ये था कि आप मुझे बता रहे थे कि मुहर्रम का मतलब क्या है, तो इसका जवाब जो है वो है जनाब इज्जत वाला महीना, हुर्मत वाला महीना। तो अगर आप जी मेरे लिसनर्स इन्होंने मुझे सही जवाब दिया तो आप लोगों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया। और यहाँ पर टाइम अगर देखा जाए तो आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त हुआ जाता है, इनशाला आप लोगों से मुलाकात मेरी वरी जिकवान सुभाने थियण वाली है, यानी कि 1 बजे का 3 बजे ताई असा तवा सा डेली गडूंदा आयो, बस जुमे वाले दिन असि मोकल हुंदी आहे। सो पांजो इलाही सरो ख्याल रखंदा ए मुखे दुआ में याद रखंदा, इते का गलती थी हो जेको एडो लफ्ज़ गालायो जेको तवा के सुठो न लगो जे, तो नला माजरत कयूं था। सो मोकलाई नाहे बाबू सन सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, आई लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम
1: जीए एफएम 88
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो
4: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
5: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर
6: उणहठि करोड़ ऐं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते जे लाइ 40,86 करोड़ रुपया मख़्सूस कया विया एमपीएस ऐं सिंध जे एमएनए ज़रिए मनसूबा ॾियण वारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेगा रिथा जे लाइ 29 अरब रुपया मख़्तस कराचीअ जे 25 वॾनि मनसूबनि जे लाइ 14,11 करोड़ रुपया रखिया विया कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 1 तहत 1300 नयूं सीसीटीवी कैमराज लॻाइण जे लाइ 90 करोड़ रुपया मख़्तस लाड़काणो में 600 बिस्तरनि जी अस्पताल जी अदावत जे लाइ 5 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ 295 स्कूल खे अपग्रेड करण जे लाइ 9 अरब रुपया रखिया विया
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
7: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो जीए एफएम 91.6 आप सुन रहे हैं
8: जीए एफएम
7: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मेरा बारिश।

को झुकाने वाले मिट गए तुझको मिटाने वाले, तरफ झूठे मक्कार तरफ सैयद सरदार, जुल्म उधर और जबर उधर, सैयद तेरा सब्र इधर, उधर थे नए देवर छी भाले।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

राज जो है उसका राज है ये, खिलकतों में रब का नाज है ये।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

ना जाने वसदाए अली साढ़े छावा बिच जिंदगी गुजार दी है अली दिया छावा बिच अली दा है प्यार असा मंगिया दुआ बिच गूंजता जहान बिच नारा अली अली है मस्ता ते मलंगा दा गुजारा अली अली है जानदा है हाल अली सुन दा सवाल।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

सबको मुबारक, ये ईद जो है सबसे बड़ी सबको मुबारक, अल्लाह नबी और वली सबको मुबारक, मेरा जे रसूले अरबी सबको मुबारक।

सूरत में शबाहत में अली है ये गुले तर, सीरत को अगर देखो लगेगा ये पयंबर, क्या नाम नसब में है कोई इसके बराबर, धरती पे उतर आया है अल्लाह का मजहर।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: अली अली।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: GA FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।